0: लन्ना यूं ही साथी
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की
0: मुश्किल

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू